हियत के जवाब में किए गए। बैन अल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें ईरान पर जोर दिया गया है कि वो अपनी अफजूदा यूरेनियम के बारे में मालूमात जाहिर करे और IAEA के मुआयनों को कबूल करे। बुध को वियना में एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की तरफ से पेशकर्दा करारदाद पर वोटिंग हुई। सफारती ज़राए का कहना है कि करारदाद के हक में 21 और मुखालफत में 3 वोट आए, जबकि 10 अरकान ने रायदही में हिस्सा नहीं लिया। रूस, चीन और नाइजर वो ममालिक थे जिन्होंने मुखालफत में वोट दिया। करारदाद में ईरान पर जोर दिया गया है कि वो अफजूदा यूरेनियम समेत अपने जौहरी मवाद की मुकम्मल तफसीलात के साथ साथ मुतल्लिका तंसीबात के बारे में पूरी मालूमात भी फराहम करे। करारदाद में ये भी कहा गया है कि ईरान को चाहिए कि वो तस्दीक के लिए जौहरी एजेंसी को रसाई दे। ईरान के नायब वजीर खारिजा काजिम गरीब आबादी ने कबल अज़ीं सोशल मीडिया पर कहा था कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीका और इसराइल के हमलों के नतीजे में तस्दीकी सरगर्मियां रुक गई हैं और IAEA के मुआयनाकारों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। याद रहे कि अमरीका और इसराइल ने गुज़िश्ता जून में ईरानी जौहरी तंसीबात पर ये हमले किए थे।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 11 जून बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। ईरान के सरकारी प्रसारक प्रेस टीवी ने देश की केंद्रीय कमान के हवाले से बताया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रेस टीवी ने बृहस्पतिवार को खातम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के वक्तव्य की जानकारी दी। वक्तव्य में कहा गया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को तेल टैंकरों और व्यावसायिक जहाज़ों सहित सभी प्रकार के जहाज़ों के लिए बंद कर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस जलमार्ग से गुजरने की कोशिश करने वाले को निशाना बनाया जाएगा। वक्तव्य में कहा गया है कि अमेरिका ईरान के दक्षिणी प्रांत पर हमले सहित अपनी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को लगातार अंजाम दे रहा है, जिसके जवाब में जलमार्ग को बंद किया गया है। उधर अमरीकी सेना ने ईरान के दावों का खंडन किया है। अमरीकी केंद्रीय कमान का कहना है कि व्यावसायिक जहाज़ आज रात भी होर्मुज जलडमरू मध्य से आ जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय कमान ने यह भी लिखा कि किसी भी अमेरिकी युद्धपोत पर हमला नहीं हुआ है। उसने ईरानी मीडिया सूत्रों के इस दावे को झूठा बताया कि ईरान ने जलडमरू मध्य में एक अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम का कहना है कि सेना ने आत्मरक्षा के उद्देश्य से ईरान में कई ठिकानों पर अतिरिक्त हमले की कार्रवाई पूरी कर ली है। सेंटकॉम ने बुधवार को पूर्वी अमेरिका समयानुसार रात लगभग 9 बजे सोशल मीडिया पर यह घोषणा की। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी मरीन कोर, वायुसेना और नौसेना ने अमेरिकी बलों और क्षेत्रीय जलक्षेत्र से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक जहाज़ों के लिए खतरा पैदा कर रहे ईरानी ठिकानों पर सटीक गोलाबारी की। सेंटकॉम के अनुसार इस कार्रवाई में समूचे ईरान में मौजूद सैन्य निगरानी क्षमता, संचार प्रणालियों और वायु रक्षा ठिकानों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने बताया कि ये हमले ईरान की अनुचित

और निरंतर आक्रामकता के जवाब में किए गए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने एक प्रस्ताव पारित कर ईरान से अपने संवर्धित यूरेनियम के बारे में जानकारी देने और IAEA जांच स्वीकारने का आह्वान किया है। बुधवार को वियना में आयोजित IAEA गवर्नर मंडल की बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मतदान किया गया। राजनयिक सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव 3-21 मतों से पारित हुआ, जबकि 10 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। रूस, चीन और नाइजर ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। प्रस्ताव में ईरान से आग्रह किया गया है कि वो संवर्धित यूरेनियम सहित अपने परमाणु सामग्री भंडार और संबंधित सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी फौरन उपलब्ध कराए। इसमें ईरान से ये भी कहा गया है कि वो IAEA को जांच की अनुमति दे ताकि वो पुष्टि कर सके। ईरान के विदेश उपमंत्री काजेम गरीबाबादी ने इससे पहले सोशल मीडिया पर कहा था कि ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमरीकी व इजरायली हमलों के कारण IAEA के निरीक्षकों को अपनी पुष्टि गतिविधियां रोककर ईरान छोड़कर जाना पड़ा था। अमेरिका और इसराइल ने पिछले साल जून में ये हमले किए थे।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कहा है कि वो इस बात से बेहद रोमांचित हैं कि लोगों को स्वप्न दिखाने वाला ये खेल आयोजन बस कुछ ही घंटे दूर है। उनका इशारा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की ओर था जो बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है। ये फीफा का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा जिसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी। इन्फेंटिनो ने बुधवार को उद्घाटन मैच के आयोजन स्थल मैक्सिको सिटी स्टेडियम में पत्रकारों से बात की। उन्होंने मैच की टिकटें महंगी होने संबंधी शिकायतों का जवाब दिया। इन्फेंटिनो ने कहा, यदि हम टिकटें मुफ्त भी दे देते तो भी अंततः हजारों डॉलरों में उनकी कालाबाजारी होती। उन्होंने आगे कहा कि वो बहुत खुश हैं कि अमरीका के साथ जारी संघर्ष के बावजूद ईरानी टीम टूर्नामेंट में भाग ले रही है। ईरान की राष्ट्रीय टीम अपने ग्रुप स्टेज के तीनों मैच अमरीका में खेलेगी। हालांकि उसे अपना प्रशिक्षण शिविर मैक्सिको में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और खबरों के मुताबिक एक दर्जन से अधिक सहायक कर्मियों को वीजा नहीं मिला है। इन्फेंटिनो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जब ईरानी टीम खेलेगी तो सकारात्मक माहौल होगा। हांगकांग के अधिकारियों ने एक गगनचुंबी आवासीय परिसर में लगी आग के संबंध में दो कंपनियों और 7 लोगों पर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि नवंबर 2025 में लगी इस आग में 168 लोगों की मौत हो गई थी। हांगकांग के उत्तरी क्षेत्र ताइपो में स्थित इस परिसर की 8 में से 7 इमारतें आग की चपेट में आ गई थीं। जांच अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को उन्होंने आग लगने के समय नवीनीकरण कार्य में शामिल 2 कंपनियों, एक ठेकेदार कंपनी और एक परामर्श कंपनी सहित 7 व्यक्तियों पर हत्या सहित कुल 25 आरोप लगाए हैं। पुलिस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों ने निर्माण परियोजना की ठीक से देखरेख करने तथा निर्माण सामग्री और प्रक्रियाओं के आवश्यक सुरक्षा मानक सुनिश्चित करने में लापरवाही बरती। उन्होंने कहा कि संभवतः इसी वजह से आग तेजी से फैली और बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। अधिकारियों ने परियोजना में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया जिसमें निविदा प्रक्रिया के दौरान एक झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करना और ये झूठा दावा करना शामिल है कि निरीक्षण ठीक से किए गए थे। जापान की वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा मोटर की वार्षिक रिपोर्ट से पता चला है कि अध्यक्ष टोयोदा आकियो को वित्त वर्ष 2025 के लिए मंडल निदेशक के रूप में 2.1 अरब येन यानी लगभग 1.3 करोड़ डॉलर प्राप्त हुए। यह आंकड़ा एक वर्ष पहले की तुलना में 8% अधिक है और टोयोटा के किसी भी कार्यकारी को दिया गया अब तक का सबसे अधिक वेतन है। टोयोटा का कहना है कि उसने अध्यक्ष की भूमिका के अनुरूप वेतन पर चर्चा करने और अन्य वैश्विक वाहन कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के वेतन से तुलना करने के बाद इस राशि में बदलाव किया। अप्रैल में उपाध्यक्ष बने पूर्व सीईओ सातो कोजी को करीब 80 करोड़ येन यानी लगभग 50 लाख डॉलर का वेतन दिया गया। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।